0: que me message. लो जी मैसेज कर दी डॉक्टर साहब।
1: जनहित विच सूचना, मशहूर होम्योपैथिक सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलदे रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
2: ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ।

लो बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: नहीं दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी की माँ। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी की माँ थाडे नाल पेश कर दें जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत गोयल।
1: कीमा रांझे दा भतीजा गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याया गया। निक्कियां निक्कियां दा व्याह हो गया, जवानी आई ता दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकीए तेरा कीमा असी कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहना सी, हुण तां गभरू होके होर भी सोहना लगदा होणा। उधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अड़े आ कीमिया तेरी मलकी हजारां नहीं बल्कि लखां च इक है, वेंदिया सार इंसान तां की परिंदे वी काटा गिर पैंदे। एक दूजे दे हुसन दी तरीफ सुन दे, एक दूजे उत्ते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक बारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रस्ते दे विच एक खूह दे उत्ते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उहनां विच मलकी वी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया, पानी मंगदा उहनां कुड़ियां तों, तां उहनां कुड़ियां दी सरदार ओह हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

सोचा सोच के सिफर नतीजा चिंता कोई हल नहीं जिस जमया जिस सिरजया तेनू की ओ तेरे वल नहीं नजर मेहर दी रखे तेरे ते ओले करदा फल।

आप प्रेशर देते थे उसी तरह ही इसमें वो प्रेशर के साथ वो जो धागे हैं कपड़े के उस वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप उसको प्रेशर डालोगे तो धागों के अंदर जो जगह बनेगी उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर घटित होता है और इस सेल के अंदर घटित होने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा के परमीएबिलिटी। इस परमीएबिलिटी की वजह से ही सेल बढ़ता है, सेल कम होता है, छोटा होता है। ये ऐसे कहें कि हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हजम होकर आंतड़ियों से खून में शामिल होती है। उसका प्रोसेस मैंने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे हम खुराक खाते हैं और उसमें से कैसे वो आंतड़ियों से हजम होकर और फिर खून में कैसे मिलती है। वैसे ये पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो मैंने कई बार इसमें लेक्चर किए, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा ये हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें क्योंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रेशर से खून में रच गया। जितना जितना भी एक्सट्रैक्ट उसका निकला हमारी खुराक का, हमने क्या खाया कैसे खाया, उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें खून में मिलने के लिए, चाहिए इस शरीर को और बड़ा तमीर करने के लिए या इसकी जो टूटन हो रही है, टूटबाज हो रही है उसको रिकवर करने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो तत्व इस खुराक से निचड़ कर खून में शामिल होता है। और जब ये खून में शामिल होता है तो फिर ये अलग अलग जगहों पर खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, हमारे जो आर्टरीज हैं इसमें प्रेशर बढ़ता है, इसमें टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से सेलों के अंदर ये खुराक पहुंच जाती है। सेल के अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर खुराक खाने के बाद बढ़ जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से आगे गए, ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में और ट्रिलियन सेल में ही ये क्रिया उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है, इन ए मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसके बाद सेल जो हैं इसमें से आई हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो बाकी वेस्ट बच जाता है पूरे का पूरा, हालांकि वेस्ट तो आंतड़ियों ने भी निकाल दिया था और अब जो उसमें बिल्कुल प्योरीफाइड खुराक थी वो ही निकाली थी, लेकिन जैसे हम लोग दही से मक्खन बनाते हैं तो फिर मक्खन को और प्योरीफाई करते हैं, हीट पर रखकर वो घी बन जाता है। ठीक इसी तरह ही हमने खुराक से बिल्कुल प्योरीफाइड वो मक्खन की तरह निकाला और खून में मिला दिया और खून के बाद फिर वो सेलों में गया, सेलों में प्योरी उसकी और प्योरिटी जो शामिल हुई उसमें फिर वेस्ट बचता ही है। वो जो वेस्ट बचता है जैसे हमारे मक्खन के ऊपर जो छाछ थोड़ी और आ जाती फिर उसको निकालते हैं, इसी तरह वो सेल जो है निकालता है। सेल कैसे निकालता है, एक तो खुराक आ रही है, दूसरा उसका गार्बेज बच गया है, अंदर का प्रेशर जो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली अंदर से चीजें बाहर जानी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह वो जाने वाला खून, वापसी खून जिसको हम वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन में ये वापसी वाला गार्बेज जाना शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जगह पहुंचता है। इसी तरह ही जो सही गार्बेज निकलना है, पहले तो मल त्याग से निकल गया या पेशाब से निकल गया, अब जो ऐसे आया है इस तरह का गार्बेज ज्यादातर जो है वो पसीने से या सांस से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गार्बेज निकलने का ये तरीका कार था। ये बात हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी और मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया था कि मान लिया जाए ये दीवार खराब हो जाए, इस दीवार में सुराख हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि बाहर से हरेक चीज जबरदस्ती अंदर चली जाएगी। या ऐसे कहें कि कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, टॉक्सिन हो गया, जहरीला मादा हो गया। जब दवाई खाने के बाद आप महसूस करते हो ना कि लगता है मुझे दवाई फिट नहीं बैठी, एलर्जी सी हो गई है, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस दवाई में जो चीज आपके शरीर में अंदर जा रही है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी वजह से वो खून में शामिल हुई, खून से सेलों में शामिल हुई, सेल उसको निकालना चाहता है, निग्लेक्ट करता है कि नहीं।

अच्छा नहीं है, तभी हम लोग घबराहट महसूस करते हैं। और इसी की वजह से अगर वो प्रेशर से अंदर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ और सुराख कर दिया उसने, सुराख को ज्यादा कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये अंदर जाना शुरू हुआ, फिर वो उसको निकालने की कोशिश करती। मान लिया जाए अब अंदर चले ही गई है, कोई भी चीज जो शरीर को ठीक नहीं लगती वो शरीर के अंदर चले गई है, मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन जब डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आम तौर पे सबसे पहले जो शरीर से नुकसान होता है, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए दूसरे देश पर कोई किसी देश का हमला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको, या उसके चारों ओर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको डैमेज किया जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे सेल है, सेलों में भी जैसे WBC है, इसके साथ WBC को खुराक कौन पहुंचाता है, WBC को एक्टिव कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, RBC में होती है, खून के जो लाल कण होते हैं ना ये उसी में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैक कहाँ हुआ, कि जैसे भी मिलिट्री में लड़ाई भी होती है ना तो दूसरी दुश्मन फौज उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश करती है, और सप्लाई लाइन काटने का मतलब है उसको डैमेज कर दो। तो सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन खराब हो गया या कोई चीज जबरदस्ती या जहरीली किसी भी तरह की चीज जो खा ली है वो सेलों में दाखिल हो रही है, तो उस लिहाज से अंदर का निजाम इस तरह बदलेगा। प्रेशर बढ़ गया और उसको वापसी में वो निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका निकलेगा पसीने की वजह से, तेज तेज सांस लेंगे, ये सब क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो एक कंडीशन बन जाती है ना, मेम्ब्रेन खराब होने की जो कंडीशन एक पेशेंट की बन जाती है उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया जो है ये साबित करता है कि हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट गया है और अब ऑक्सीजन शरीर की पूरी नहीं हो रही है, और इसी की वजह से हमें सांस फूल रहा है, इसी की वजह से हमें घबराहट हो रही है। इसको निकालने के लिए जो सेल है कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रेली आ रही है, मैंने कोई जहरीली चीज खा ली है, दवाई खा ली है, फिट नहीं बैठी तो त्रेली आनी शुरू होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये गलत चीज मेरे में आ गई है। और उसके बाद अगर कोई चीज टेम्परेरी तौर पे हमारे शरीर में दाखिल हुई तो उसको हमने बाद में बंद कर दिया तो फिर वो सारा कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाता है, नए सेल आने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल हैं वो हमारी बड़ी बड़ी जो लंबी बोन है उनमें से बनते हैं और वो हड्डियां फिर उसको बना शुरू कर देती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कोई जहरीला मादा या कोई बहुत ज्यादा नशा या कोई ऐसा कर लें तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में बंदा डोलने शुरू कर देता है, डिगना शुरू कर देता है, गिरता है। तो ये सब चीजें आमतौर पर इस बात की सूचक है कि अब बोन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है नए सेल बनाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो सेल सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो डेड हो रहे हैं। तो बाहरी चीज आ गई है सेलों में, उसकी वजह से वो सेल ज्यादा वहां मर रहे हैं, ज्यादा डेड हो रहे हैं जरूर से ज्यादा, और बोन्स को सेल बनाने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए हमारी टांगे लड़खड़ाना शुरू कर देती, जहर वाली कोई चीज अंदर चली जाए या जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं वो चली जाए तो हमारी टांगे जो है लड़खड़ाना शुरू कर देती। उसका मतलब भी यही है कि बोन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इस तरह के हालात में अगर हम बाहरी शरीर से देखें, उसका तो मेडिकल नाम तो मैंने आपको बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया, कि भाई खून के लाल कण टूट रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर वो जहर तो अंदर है ना, जहर की और क्या निशानियां होगी, बहुत बहुत सारा और नुकसान वो करेगा। दुश्मन अगर हमारे घर में आ गया या देश में आ गया और अंदर दाखिल हो गया तो बहुत से और भी नुकसान कर सकता है, और सी चीजों को भी नुकसान करेगा। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन हमारे सामने से दिखाई देगा वो क्या होगा,
कि हमारी चमड़ी जो है पीली हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे शरीर में जो ग्लो है ना हेमोग्लोबिन की, इसीलिए है कि उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है, अगर कोयले को आप फूंक नहीं मारोगे तो लाल नहीं होगा, अदरवाइज उसके ऊपर जो उसकी खाक है ना वो जमनी शुरू हो जाएगी, और बेशक उसके अंदर आग रहे लेकिन बाहर से वो लगेगा, उसमें राख उसके ऊपर आनी शुरू होगी। फूंक मारोगे तो वो कोला फिर जलना शुरू हो जाएगा। और अगर फूंक मारने वाली बात ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ही कम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसी तरह राख बनना शुरू, बाहर से राख ही दिखाई देगा, और इसकी वजह से क्या होता है हमारी चमड़ी जो है वो पीली हो जाती है। हमारी चमड़ी पीली हो जाती है, हमारे नाव नाखून ये पीले होने शुरू हो जाते हैं, आंख का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, नेल आंखें ये सब पीली हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशाब भी पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। और ये जितनी बातें मैंने कही हैं इनका सीधा सा बात है, एक ही लफ्ज में हम कहें तो फिर कहेंगे जंडिस पीलिया, के भाई उस बंदे को पीलिया हो गया। अगर तो एक आध बार की बात है तो ठीक हो गया, उसके बाद दवाई हमने वो छोड़ दी या वो जहरीली चीज खानी छोड़ दी तो उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रोजाना में इस तरह की कोई चीज खा रहा है तो उस लिहाज में आस्ते आस्ते ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिवर काम करना बंद कर, जैसे शराबी लोगों को बोलते ना कि भाई तेरा तो लिवर खराब हो गया डैमेज, उसका मतलब यही है कि जो नशा जो दवाई चीज आप अंदर दे रहे हो वो इतनी ज्यादा नुकसानदेह हो गई है कि उसने बहुत सारा हेमोग्लोबिन आपका तोड़ दिया, सेल आपके तोड़ दिए, जिसकी वजह से ये पीलिया होना शुरू हो गया। और उसकी तस्वीर भी मैंने आपको बताई थी कि लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से जितना भी आयरन होता है वो आयरन वहां तोड़ देता है, उसका काम ये है कबाड़िए की तरह कि जो चीज उसके पास आई उसको पीस पीस कर देगा, तोड़ देगा, और उसमें से जो जरूरी चीज है वो खरीद लेगा, इसी से उसकी जानकारी चलती है। और जो उसके पास ज्यादा बच जाएगा वो ज्यादा भेज देगा खून में, अगर कोई कम है तो उसको कम भेजना पड़ेगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि आयरन तो बहुत टूट गया, हीमोग्लोबिन तो बहुत टूट गया, इसका मतलब जितना ज्यादा आयरन टूटेगा उतना ज्यादा ही उसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डन बनेगा, इनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। ये बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट इतने ज्यादा बन जाएंगे और इतने ज्यादा हो जाएंगे लिवर में तो क्या करेगा वो ज्यादा खून में भेज देगा, ज्यादा खून में भेजेगा तो हमारा रंग पीला, आंखें पीली, पेशाब पीला, होंठ पीले, नाखून पीले, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो फिर एनर्जी का लेवल भी हमारा लो हो जाएगा, और फिर थकावट, जल्दी थकावट, फटीग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करो या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, वैसे भी चलने में जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले काम आप कर सकते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि अंदर मेम्ब्रेन की दीवार टूट गई। बाहर जहां ऐसे कहें कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से इस तरह बढ़ गया कि बाहरी चीजें जो नहीं चाहिए थी सेल को वो भी सेल के अंदर पहुंच गई, क्योंकि हर चीज जो अनवांटेड है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर जाए, इधर आलू ही ज्यादा खा लें, पोटैटो ज्यादा खा लें, आप परोठे ज्यादा खा लें, तो फिर आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देते, क्यों लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। या हर एक चीज चाहे वो जरूरी है, खुराक का अंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज अंदर चले जाती है तो वो इस तरह का हालात पैदा करती, गन्ने ज्यादा चूप ले, ये ज्यादा रसगुल्ले ज्यादा मीठे खा लिए तो फिर भी उनको ऐसे थकावट, घबराहट, वीकनेस आनी शुरू हो जाती, क्यों, क्योंकि शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर चलेगी, हेमोग्लोबिन ज्यादा टूट गया, उसकी वजह से ये होगा। हालांकि शुगर बहुत जरूरी है हेमोग्लोबिन बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग कर दिया। जब आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो आपने एक बात मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बताऊं कि अगर आप किसी पार्टी पर चले जाओ ना तो जितना हम घर में खाते हैं उतना नहीं खाते, उसे कई कई गुना ज्यादा खा जाते, ये भी खा लो, वो भी खा लो, इतने रसगुल्ले खा लो, इतनी मिठाई ये खा लो सब। और दूसरे दिन पार्टी से रात आए थे
दूसरे दिन काम पर जाने को मन नहीं करता। मजबूरी हो तो लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ये बोलते यार नहीं मन नहीं करता, बड़ी थकावट सी है, पता नहीं पार्टी में गए थे ऐसे हो गया इसलिए हो गया। एक्सरसाइज तो फ्रेश करती है ना, अगर नाचे हैं कुछ ऐसा किए हैं तो फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेश नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में चली गई है और उसने आपकी ऑक्सीजन का जो काम था वो कम कर दिया है सेल में, जिसकी वजह से थकावट होती है, रुकावट होती है, तो ये फटीक वगैरह होनी जो आम तौर पे शुरू हो जाती है। अब ये काम मेम्ब्रेन का, हम सिर्फ मेम्ब्रेन के डैमेज की बात कर रहे हैं हिंदी में, मेम्ब्रेन का डैमेज होना अगर तो टेम्परेरी है तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगातार शरीर में जा रही है तो उस लिहाज में आम तौर पे क्या होगा, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें कि तिली बढ़नी शुरू हो जाती है, कोई भी चीज अनवांटेड चली जाए शरीर के अंदर जिससे आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा टूटना शुरू हो जाए, तो उस लिहाज से ऐसा होगा कि भाई सेल ज्यादा टूट गए हैं, जिसकी वजह से सेल की रिपेयर की, क्योंकि ऐसे में बोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी सेल बोन बनाती है ना, लंबी लंबी बोन जितनी भी है, ये हमारे सेल बनाती है ना, तो ये खून में छोड़ देती, ये सब खून में छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, सर्कुलेट करते करते करते करते तिली के पास पहुंचते, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में पहुंचते हैं। स्प्लीन एक इनका इस तरह का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, जिस तरह रिक्रूट को भर्ती किया गया, उसको पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसको देखा गया कि अब इसको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता, और जो पूरे ट्रेंड होते हैं वो पास कर जाते हैं रिक्रूटिंग ट्रेनिंग और फिर उसको वापस भेज दे। वो पास कौन करेगा? वो स्प्लीन है हमारी। खून के सेलों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए या उनको ये देखने के लिए कि कितने सेल नॉर्मल हैं जिनको आगे खून में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और अगर वो देखें कि इसमें जो सेल हैं ये काम करने लायक नहीं है, सर्कुलेट करते करते बोन ने बनाए सेल, खून में छोड़ दिए, चलते चलते सर्कुलेशन में जितने भी वो खून के जरिए स्प्लीन तिली के पास पहुंचते हैं वो उनको फिर फिल्टर करती है, जो नॉर्मल सेल हैं उनको फिर सर्कुलेशन में भेज देती है, जो नॉर्मल सेल नहीं है उनको वहां रोक देती है, उनको या तो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन, खा जाना, खत्म कर देना, उसको खत्म कर देती, नहीं भी तुम चलने लायक नहीं हो, तुम नहीं मिलिट्री में बॉर्डर में नहीं जा सकते, तुम ट्रेन नहीं हो पूरी तरह, उनको वो वहां खत्म कर देती है, और फिर जो नए सेल आने शुरू हो जाते हैं फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देते। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह की लहर, इस तरह की दवाई या इस तरह की कोई चीज रोजाना ही खा रहा है बंदा और उस रोजाना उसके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेट रोजाना ही तिली को वही काम करना पड़ रहा है, सेल तो बन रहे हैं, तिली उसको फिल्टर भी कर रही है, नए नए बढ़िया सेल जो है उनको वो भेज रही है सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी स्टोरेज ज्यादा बच गया। बाकी अगर स्टोरेज ज्यादा बच जाएगा तो फिर तिली बढ़नी शुरू हो जाएगी। दाईं तरफ पसलियों के नीचे आम तौर पे वो तिली हमें दिखाई नहीं देती, अगर दबा कर आप देखोगे ना पसलियों के नीचे तो वो तिली दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है तिली, चाहे अंदर से किसी अंग की खराबी से वो जहर बन रहा है, इसको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। दो तरह का जहर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी खुराक के साथ जा रहा है जो बाहर से जा रहा है उसको हम बोलते थे एग्रोटॉक्सिन, और एक ऐसा है किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी अब उसमें यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, वो जहर के तौर पर शरीर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह ही अलग अलग अंगों में अगर उनका निकास नहीं पूरा हो रहा गार्बेज का, वो खून में चला गया तो वो भी एक जहर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। तो सेल से बाहर से भी कोई जहर जा सकता है, अंदर से भी कोई जहर जा सकता है, लेकिन काम उनका वही होगा कि वो सेलों को ब्रेक करेंगे, किडनी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाएगा,
उसका काम बढ़ जाएगा और उसकी अपनी काम करने की समर्थता है, एक लिमिट है ना कि कितना वो खून साफ कर सकती है। और उससे ज्यादा सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जहर खा लिया या बार बार खा लिया, अल्टीमेट उतने बोन सेल बना नहीं रही जितने सेल आगे चाहिए, और उनमें से भी डैमेज सेल है, उनमें भी पूरे ट्रेंड फौजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, स्क्रीन के पास स्टोरेज इतना नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो तिली ये हमारी पसलियों के नीचे हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं हुडकिंस डिजीज। और फेगोसाइटिक फंक्शन जो उसका था कि कितना खा लेगी बेचारी, कितना हजम कर लेगी, कितना बर्न आउट कर देगी। पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ड्रग वगैरह पकड़ते हैं, तो फिर कई बार उसको बर्न करते हैं, बंद करते हैं, माल खाने का सामान निकालकर उसको बंद करते के लिए, या कहीं और मार्केट में ना जाए या कहीं ऐसा ना हो। सो उसलिए ये ट्री का काम है, तो उसके पास जितना गार्बेज बच गया, एक्स्ट्रा गार्बेज हो गया, अब उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो फिर वो उसको कितना बर्न करेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तिली बढ़ जाती, वो गार्बेज बढ़ गया तो तिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का सेल का मेम्ब्रेन किसी कोई जहरीली मादा अंदर जाने की वजह से, या इवन खुराक का ही ऐसा हो गया, जो खुराक नहीं चाहिए वो आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो गया, या अंदर कोई किसी को किसी अंग का कैंसर हो गया, या किसी अंग की खराबी होगी, अंदर से ही टॉक्सिन बन रहा है और वो सेल में जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर सेल ज्यादा टूट रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि पीलिया हो जाएगा, रंग पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, नौ पीले होने शुरू हो जाएंगे, ये आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, ये निशानी होगी। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस तरह की कंडीशन आए, ये हमें बताएगी कि नुक्स कहाँ है सेल मेम्ब्रेन में, कि पीली बढ़ जाएगी, पीली बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बीमारी का मरीज हो ना, जस्ट फॉर कैंसर आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, किसी का कैंसर हो ना, तो जिस जगह का कैंसर हो सबसे पहले वहां के एरिए के नजदीक जितने भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो हैं जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, सेलों से गार्बेज इकट्ठा करते करते करते करते खून को साफ करते हैं, कि खून तो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, वापसी जाने वाला आने वाला खून फ्रेश है, वो सीधे जा रहा है, वो जीडी रोड है, उसमें कोई लाइन, कोई ट्रैफिक लाइन लाइट नहीं है रुकने वाली, वो सीधा सेलों में जा रहा है। सेलों से जो वापसी आता है उसमें जगह जगह ब्रेकेज है, जैसे पुलिस कटा रहता है, उसमें जितना भी गार्बेज या जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं जो खराब सेलों के या खराब अंग से ज्यादा गार्बेज बन के निकल रहा है, उनको जगह जगह रोकती है ट्रैफिक, इनको चेक करेंगे भाई इसके कागज पत्र पूरे हैं कि नहीं है, वो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड भी अगर बहुत ज्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे, अगर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उसको रोक लिया, अगर ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएंगे तो फिर कितने के सिपाही वहां होंगे, कितने को उसको कंट्रोल करेंगे। हर लिम्फ नोड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिम्फ नोड फूलने शुरू हो जाएंगे। अगर लिम्फ नोड का सीधा चैनल है वो कहां जाएगा, तिली में। अब तिली भी बेचारी ऐसी है कि बेकाबू हो गई है, तो इस लिहाज से हम लोग चेक करते हैं कि कहां कहां लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, ये साबित करता है कि किधर से बीमारी आ रही है, किधर से ये लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट स्प्लीन तिली तक पहुंच गए हैं, अब हमारी तिली भी बढ़ गई। वो जो तिली का बढ़ जाना है वो इस बात का सूचक है कि आपके सेल का मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद अब मान लिया जाए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो अगर शरीर में दाखिल हो गई, सेलों में दाखिल होगी, मैं इसकी और एग्जांपल आपको दूं, दूध है ना, दूध में बिगड़े चाटा दूध का कांजी की कुख है, कांजी की एक बूंद, कांजी की एक बूंद अगर डाल दो दूध में तो वो पूरे का पूरा दूध खराब कर देते, क्या बन जाता, पनीर बन जाता। जैसे हम पनीर बनाते हैं ऐसे घर में, उसमें नींबू डाल देते हैं या कुछ और चीजें डाल देते हैं जिससे दूध फूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसमें जो थिक मटेरियल है वो अलग हो जाता है। और अगर किसी सेल में इस तरह की कोई चीज चले गई तो वो क्या करेगी, अंदर का जो मटीरियल था उस सारे मटीरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूध मान लें जी, दूध का चाटा है ये जो पूरा सेल है, ये एक चाटी है दूध की, पॉट है, और उसमें जितना अंदर है जो भी कुछ है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसको अब दूध मान लें। और अब इसमें कोई इस तरह की चीज आ गई
जिसको हम कांजी की तरह बहे, जिसको हम खट्टे की तरह नींबू की तरह बोले, तो वो क्या कहेगी? वो अंदर के दूध को फुटा देगी। अंदर का दूध फूट गया, अब क्या होगा? सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी तो सभी चीजें, जितनी भी उसके अंदर और काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगी कि यहाँ तो आग फैल गई है, अब सब सेपरेट हो जाए। तो वही काम जब इस तरह होना शुरू हो जाता है तो जितने भी सीरम हैं, जितने भी सिक्रीशन इस शरीर से बन बन कर शरीर को हजम करने के लिए निकलते हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे पेट में HCL निकलता है या पेप्सिन निकलती है या बाइल निकलता है लिवर से या पैंक्रियाज से, इंसुलिन निकलती है, एंट्रोपेनाइज आंतड़ियों से निकलती है, इनको हम एंजाइम्स, मुंह में निकलता है टाइलन। तो जितने भी ये एंजाइम निकलते हैं ना, ये पूरे के पूरे इस तरह हो जाते हैं जैसे दूध फूट गया हो। दूध फूट गया है क्योंकि सेलों के अंदर इस तरह की कोई चीज चली गई कि वो अंदर का निजाम, अंदर का जो दूध नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये फूटना शुरू हो जाएगा तो फिर अलग अलग थक्का बन गया ना, अलग अलग वो जमना शुरू हो गया ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं रहा, नॉर्मल दूध तो नहीं रहा, ठीक है, हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये टेंडेंसी अगर मान लिया जाए लिवर से बाइल निकल रहा है, और बाइल जमा हो रहा कहां? गाल ब्लैडर में जमा हो रहा है, और उसमें आकर हुआ क्या कि वो तो फूट गया, वो तो पनीर बन गया है, तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो जो थक्का जम गया है वो नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठा बैठा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर की एक कंसिस्टेंसी है कि हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा जैसे कोई चीज सुकड़ती है फैलती है, सुकड़ती है फैलती है, हर एक सेल ही ऐसे कर रहा है, तो गाल ब्लैडर भी ऐसे कर रहा है। तो वो जो सिंगनी चीज है उससे पूरी तरह स्क्वीज होकर निचोड़ कर पानी तो उसका ऊपर आ रहा है, सिंगना मादा जम रहा है, तो क्या बनेगा? गाल ब्लैडर का स्टोन बन जाएगा। और गाल ब्लैडर का स्टोन ही क्यों बनेगा? किडनी में भी तो वो जा रहा है, वही खून जा रहा है, इसी तरह किडनी के अंदर भी क्या होगा कि स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अकेला किडनी में ही नहीं, बॉडी के और बहुत सी जगह है, जैसे ग्लैंड जितने भी हैं, थायराइड ग्लैंड गले में, मुंह में बहुत सारे सबलिंगुअल ग्लैंड हैं या वेस्टिबुलर ग्लैंड, कितनी तरह के ग्लैंड मुंह में, जितनी जगह जगह अलग अलग ग्लैंड हैं, उनमें भी यही कंडीशन बन जाएगी कि भाई वो दूध तो फूट गया, और उसी में भी पथरी बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। अब यही बात, यही खून चमड़ी में भी तो जा रहा है, चमड़ी में भी जा रहा है, तो वो कड़ी आज जितने बोलते ना स्किन टैग हो गए, मौके हो गए जी, बड़े बड़े मौके होने शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं ट्यूमर गिल्टियां बननी शुरू हो गई हैं शरीर में, मेरे यहां पर भी गिल्टी, मेरे पेट में भी गिल्टी, या बाव में भी गिल्टी, ये जितनी भी गिल्टियां होनी शुरू हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि आपका दूध फूट गया है, सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से यही अब जगह जगह सेल में, एक दूसरे से सेल में जा रहा है, सेल टू सेल बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाते अलग अलग जगहों में जम रहा है, वहां पर ये स्टोन फॉर्म करेगा। सो ये बातें आम तौर पर मान लिया जाए पथरी का आता है कोई भी केस किसी के डॉक्टर के पास, तो असल वो ये होता क्या है? अच्छा भाई गाल ब्लैडर निकलवा दो। अरे भाई गाल ब्लैडर निकलवाना हाल तो नहीं है ना, असल हालत तो ये है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात चली कहां से है। गाल ब्लैडर निकाल दोगे तो आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली कहे कि कबूतर नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, वो दूसरे किसी अंगों में जाएगा और कहीं जगह जगह जगह ये संगना जमना शुरू हो जाएगा। तो पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है, नहीं नहीं ये जो तुम्हारी बवासीर है ना, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, गाल ब्लैडर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई अंग तो वही है, वही सेल है, वही सेलों का अंदर का निजाम मेम्ब्रेन खत्म होने की वजह से, खराब होने की वजह से अंदर का निजाम तो हर एक जगह का बदला है, ऐसे तो नहीं है कि एक जगह का बदल गया दूसरी जगह का नहीं बदला है, हर एक जगह का होता है। हाँ ये होता है कि एक जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, दूसरी जगह में मैंने एक एग्जाम्पल दी थी यहाँ का, अगर कहीं रिश्तेदारी में कोई डेथ हो जाती है ना,
जितनी जितनी हमारी नजदीकी होती है उसमें, उतना उतना हमें दुख होता है, उतनी उतनी पीड़ होती है। जितना जितना दूर का अंग होता है उतना उतना थोड़ा दुख कम होता है, दुख तो होता है उतना कम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरह की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा, लेकिन वो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा इफेक्ट हमें उस अंग में ही दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते तेरे तो गाल ब्लैडर में नुकसान है, गाल ब्लैडर निकाल दो। जहां पर दुख है उसी को निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हम लोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि असल में जो कुदरत ने शरीर बनाया है उससे सियाने उससे समझा तो हम नहीं है ना, पर एक चीज जो उसने लगाई है ना वो किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से लगाई है। और हम कहें कि नहीं भाई ये चीज तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब मैं अब देखा कि वो ट्रेंड चलता है कि किसी को अपेंडिक्स जो होता है ना, कई बार बच्चे पैदा होते ही उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ना भाई आगे चलकर इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसी प्रॉब्लम ना हो जाए। कई बार लोग पहले मर जाते थे अपेंडिक्स की वजह से, अंदर फूट जाता था तो बोलते इसको निकाल ही दो। लेकिन अभी हमें पता चला क्योंकि डे टू डे जो रिसर्च होती पता चलता है कि जितने भी अंग कुदरत ने शरीर में लगाए हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन है। उसको निकाल देने का मतलब ये हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते उसके फंक्शन के बारे में। और हम जानते हैं और फिर भी निकालते हैं तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई पर्पज है जो उसने लगाया है वो काम कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। एक आदमी क्लर्क यहां काम करता था, उसका कोई काम था, अब आपने उसको हटा दिया, अब वो फाइलें कौन देखेगा? और किसी और डिपार्टमेंट जाएंगी उसको खराबी करेंगे, उसका तो अपना काम है। तो इसी तरह गाल ब्लैडर को निकाल देना हल नहीं है, या किडनी वाली बात कहां भी हो गई उसको वहां से हटा देना अंग को, ये उसका हल नहीं है। हल ये है सोचना है कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो उसको ठीक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरनल इंडोटॉक्सिन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन से हुआ है। तो उसी के मुताबिक डॉक्टरों को परहेज बताना होगा, उसके मुताबिक डॉक्टरों को इलाज करना होगा ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए, किसी अंग को काट कर बाहर फेंकना ना पड़े। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीजें ऐसा कर रहे हैं और सभी अंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आपको कोई पर्पज नहीं है, अब इसको निकाल दी। अब जब हम इसको ऐसे करते हैं, जानते हैं भी ये हो गया है, इसकी वजह से और क्या निशानियां आएंगी, पीडीए की बात मैंने बता दी। सांस ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी और दिल ज्यादा धड़कना शुरू करेगा। क्यों ब्रेथलेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है? मतलब अब ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही। अब दिल का क्या काम है? दिल का काम है सेलों को, खुराक को अलग अलग जगह पहुंचाना। अब सेलों के लिए वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके पास रेड ब्लड सेल हैं, वो तो डब्बे हैं, खाली खाली डब्बे हैं ट्रेन के, उसमें माल भर के जाता है, ऑक्सीजन भर के जाती। अब और सेल ही टूट गए हैं, सेल ही कम है, ट्रेन के डब्बे ही कम है जिसमें ऑक्सीजन जा सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब दिल का क्या काम है कि ना भाई तेरा काम है सप्लाई करना। अब मिस्त्री दीवार पे काम कर रहा है और जो वो सीमेंट पहुंचाने वाला बंदा या ईंट पहुंचाने वाला बंदा, वो सीमेंट ईंट नहीं पहुंचाएगा तो मिस्त्री तेरा क्या करेगा? नहीं तो उसको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाने पड़ेंगे कि फटाफट चलो भाई, मिस्त्री खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही काम ऑक्सीजन पूरा करने के लिए दिल को बार बार धड़कना पड़ता है, बार बार 72 से 80 बार हम लोग नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही किसी भी हालात में, अब ये हालात तो मैंने आपको मेम्ब्रेन का बता दिया ना, अगर किसी भी हालात में ये अगर पूरा नहीं हो रहा तो उस हालात में दिल को बार बार धड़कना पड़ेगा, बार बार इसको सर्कल में लाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से जो फेफड़ों का काम है कि नहीं बाहर से ऑक्सीजन और ज्यादा ले लो बाहर से, ओके बाहर की ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसमें से ऑक्सीजन हम उसको फिल्टर करके सेलों में देनी है। लेकिन अब पूरी नहीं हो रही तो फिर हम सांस भी तेज तेज बार बार लेंगे और ये कंडीशन जो है सामने हमें दिखाई देगी, जो ये साबित करेगी पेशेंट आया सामने देखें और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसमें मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है,
चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हरेक सिस्टम ही वीक हो जाए, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हजम नहीं हो रहा। और एक और बात, अगर जिन लोगों को ये चीज लगातार लंबे समय तक रहती है, अब बुजुर्गों को देखते हो ना कि एड़ी फट गई है, उसकी बिराइयां फटनी शुरू होगी जिसको बोलते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं, पोटे हैं, वो क्रैक होने शुरू हो गए। ये क्यों होता है? ऐसे होता है कि उनके सेलों में जो चीज जा रही है वो पूरी तरह वहां एडजस्ट नहीं हो रही, और वो खुराक सर्कुलेशन में भी पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जैसे नहर की टेल होती है ना, जहां पर बहुत ब्रीक हो जाती, छोटी हो जाती नहर, वहां पर पानी नहीं जाता। अगर पीछे से प्रेशर कम हो या बाखड़ा से पानी कम छोड़ा जाए तो वो नहीं जाएगी। इसी तरह ही बुजुर्गों में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती, व्याइयां फटनी शुरू हो जाती, उंगलियों के टिप्स जो फटने शुरू हो जाते। पर ये बात हम बुजुर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन किसी यंग एज में होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इमीडिएट इंडिकेट करती है कि नहीं, इसके शरीर में कोई ना कोई इस तरह का जहरीला मादा जरूर चले गया है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे याद है एक एग्जाम्पल मेरे फादर साहब दिया करते थे हकीम अजमल खां के बारे में। वो बोलते हैं कि हकीम अजमल खां को उस वक्त तो वैद होते थे, इस तरह की क्लिनिक बनाकर हमारी तरफ तो नहीं बैठते कि दो तीन कमरे हम रिजर्व करके बैठे हैं कि मेडिसिन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, फाइलें अलग है, इस तरह का तो काम नहीं होता था उस वक्त। तो उस वक्त वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वैद जी बंदे लगे हुए हैं, कूट पाट के वो सबको दे रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि हमने सुना है अजमल खां हकीम का बहुत नाम सुना है, देखते हैं, चेक करते हैं उसको। और वो उसके पास चेक करने के चले गए। उसने बोला कि भैया हम लोग आए हैं और देखिए तो नब्ज देखकर हमारी बताइए क्या बीमारी है। और उन्होंने देखा और उसने बोला अच्छा इनको भाई फलानी फलानी दवाई दे दो। बोला यार नाम तो बहुत सुना था, इसने तो एक मिनट में हमें कहा दी वो दवाई दे दो, इसका क्या हुआ, कैसे इसको कैसे पता चल गया बीमारी क्या है, कैसे है? वो गए और थोड़ी दूर जाकर बोलते हैं यार ये ऐसे ही नाम सुना था, नाम ही चलता है इसका और कोई काम तो है नहीं इसका। और उसके किसी शागिर्द ने, अजमल खां के शागिर्द ने सुन लिया तो उसने वैद्य जी को बताया। अजमल खां ने कहा उनको बुलाकर लाओ। बुलाया, वो बोलता है तुम्हारे शरीर में आज से 10 साल पहले का कोई जहर है और उस जहर की वजह से तुम्हारा ये मेम्ब्रेन खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने ये दवाई आपको दी है। बोला भाई कुछ हुआ था? तो उसने बताया मुझे सांप लड़ा था, सांप ने काटा था। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो ये निशानियां आम तौर पे आनी शुरू हो जाती, डिजीनेस होगी, बंदा इरिटेट हो जाता है। जब सांस फूलता है ना कि नहीं काम चला जाता है तो काम करना पड़े तो आदमी इरिटेट हो ही जाता है। ये साधारण सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस होगी, इरिटेशन होगी, मांसपेशियां सूखनी शुरू होगी, बियाइयां फटनी शुरू हो गई अगर लंबे समय तक है। और जवान बंदा बूढ़ा है तो हम समझते हैं कि कंडीशन है, एज ओल्ड एज की सर्कुलेशन स्लो हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे की कहानी सेल मेम्ब्रेन की है। अब भाई बूढ़ा हो गया और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसमें क्या होगा? उसमें दो बीमारियों का नाम हम देते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्जाइमर, दूसरे को हम बोलते हैं पार्किंसन। अल्जाइमर को हम ये बोलते हैं कि ब्रेन को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा और याददाश्त कमजोर हो गई। अल्जाइमर के पेशेंट मैंने इस तरह के देखे हैं कि उस पेशेंट को उसके अटेंडेंस की लड़का या लड़की कोई लेकर आए हैं साथ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो साथ में मुझे लेकर आया है मेरा बेटा है, बेटी है या कौन है, उनको ये भी याद नहीं, उनको नाम भी याद नहीं रहता। अल्जाइमर की कंडीशन इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एक बार मैं ये जो टीवी स्टेशन है जिसके प्रोग्राम मेरे चलते थे जस्ट पंजाबी में, मैं उनका ये अल्जाइमर पर लेक्चर दे रहा था और बुजुर्गों के हालात की मैं बात कर रहा था और वो जो आदमी वो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था ना, वो मशीन के पीछे बैठा हुआ रो रहा था कि हम लोगों को भी बुजुर्ग होना है, अगर ये हालात हमारे साथ बने जो डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत मुश्किल वाली बात है ना, और वो रो रहा था। अल्जाइमर किस तरह की कंडीशन है कि हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, अब हम उसको पहचानते नहीं है। मतलब जो हमारा फ्रंटल लोब है ना ब्रेन का, ये अलग अलग ब्रेन एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, मैंने इसके कई बार बातें आपसे की,
और इस ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग काम करते हैं। हमारा फ्रंटल लोब जो है ना ये याददाश्त से कनेक्टेड है, हमारी कैलकुलेशन से कनेक्टेड है, हम मैथ में होशियार होते हैं कि कमजोर होते हैं, ये हमारे फ्रंटल लोब पे है। हमें याद रखना है, बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें भी हमें याद रह जाती है जिसका मतलब हमारा फ्रंटल लोब काम कर रहा है। अगर ये भी याद ना रहे कि ये सामने कौन बैठा है तो फिर समझो कि फ्रंटल लोब जो है डैमेज हो गया है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, हालांकि ये बात है कि कुदरत ने ब्रेन को ठीक रखने के लिए, जैसे किसी देश से लड़ाई हो जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है देश का या फौजों का कमांडर होता है उसको बचाकर रखते हैं कि इसकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम हार गए, जंग को हार गए, ये एक टेंडेंसी होती है। और उसी लिहाज से कुदरत ने ये कहा कि ब्रेन पूरे शरीर को चला रहा है, इसको दो गुना खून दीजिए, इसको दो गुना खुराक जाए, दो गुना नहीं इसको ऑक्सीजन जाए, ज्यादा तो ऑक्सीजन की जरूरत है, हम आदमी है, एकदम ही दम आया तो हम आदमी नहीं तो डेड बॉडी है, और दम का मतलब है ऑक्सीजन। सो ब्रेन को जो आप देखते हैं ना गले में ये दो नाड़ियां ऊपर जाती है, हाथ लगाकर देखो तो दोनों साइड में टक टक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, खून की नाली बाई तरफ से दिल से निकलती है, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर यहाँ पर आके एक गोलाई में पेट को नीचे जानी शुरू हो जाती है सभी अंगों को सप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही इसकी गोलाई है उसमें से दो नालियां सीधी सिर को जाती है, प्रेशर हुआ सीधी दो नालियां सिर को जाती है ताकि दो गुना खून सिर को पहले पहुंच जाए, उसको ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा खुराक मिले। बावजूद इसके भी अगर नहीं जा रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो फिर ये याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, और बुजुर्गों में आमतौर पे होता है, पर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की डैमेज की। अगर उम्र से पहले ऐसा हो जाए तो लोग आमतौर पे 50 55 60 में बोलना शुरू कर देते हैं, और मुझे भूल गया यार, या भूलने की आदत हो गई है, बहुत सी चीजें मैं भूल जाता हूँ, साधारण सी बात है, आम ही लोग बात करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, खुराक की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, ये इस चीज का साइन है। हाँ, इसकी दो कंडीशन है, एक को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, कि घरवाली ने कहा कि बाजार से आते समय ये चीज लेते हैं ना, अब मेरे पास तो बहुत से काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करूं, ये करूं वो करूं, करते करते ये भूल गया वो जो घरवाली ने कहा था सामान लाने के लिए मैं नहीं जा सका, तो इसका मतलब है एब्सेंट माइंडेडनेस, ये वो बात नहीं है। एब्सेंट माइंडेडनेस के मेरा जो कोटा है इंटेलिजेंसी का उसको रखने का, ठीक है क्या क्या मैंने करना है वो छोड़ा है, छोटा है, नहीं याद रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, उस चीज का नाम है अल्जाइमर। और दूसरी बात मैंने इसी हालात में सेल मेम्ब्रेन की डैमेज के बारे में ही कही थी कि अगर इस तरह का होना शुरू हो जाता है और उम्र बुजुर्ग हो तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसन। और पार्किंसन को दूसरे लफ्जों में हमें बयान करना हो तो हम कहेंगे इनकोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। माइंड का अगर बड़े अफसर ने हुक्म दे दिया, और आपने देखा होगा कि नीचे वाले अफसर काम ही नहीं करते, उस तरह बेपरवाही करते हैं, नहीं परवाह करते उसकी, तो किया है हुक्म तो कोई बात नहीं। अब हाई कोर्ट की बहुत सी बातें होती हैं, वो सरकार को बोल देते हैं, सरकार काम ही नहीं करती, नहीं करती, तो मतलब इस तरह का भी काम हो जाता है। और इस चीज को हम बोलते हैं पार्किंसन। अगर शरीर में इस तरह का हालात बन जाए कि ब्रेन चाहता है मैं कुछ करूं, हाथ को ऑर्डर देता है कि ये पकड़ो, हाथ पकड़ ही नहीं रहा। कुछ लोगों के हाथ आपने कांपते हुए देखे होंगे, यंग एज में भी लोगों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोरिया। उसका कंडीशन भी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और हम ये बोलते हैं कि ओल्ड एज के हालात में अगर ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अच्छा बापू चाचा ये लो चाय का कप ले लो, आपने उसके टेबल पर रख दिया कि चाय पी लो, लेकिन अब उसका दिमाग तो ये करता है कि भी मैं चाय के कप को पकड़ूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो चाय के कप को जहां से पकड़ना वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटका लगता है और कप गिर जाता है। ये इसको हम बोलते हैं पार्किंसन। इनकोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और अपने शरीर का काम करने का। ब्रेन ने तो ऑर्डर किया है कि कप पकड़ो और पियो, लेकिन हाथ उसको उसके मुताबिक नहीं कर रहा जैसे उसने कहा था। तो ये सब बातें जो है आमतौर पर ओल्ड एज में होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन
अगर यंग एज में हो जाए तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई ऐसा हो गया। अब इतनी सारी बातें मैंने आप सब लोगों को बोल दी कि भाई फिर हल क्या है इसका, क्या करें। बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम ये शनाख्त करें इंडोटॉक्सिन है कि एब्जोटॉक्सिन है। हमारी खुराक पहले डॉक्टर बोल रहे हैं परहेज करो जी। अच्छा डॉक्टर जी खाना क्या है मुझे, ये आम लोग पूछते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई एग्जोटॉक्सिन है खुराक की वजह से जा रहा है या किसी दवाई की वजह से जा रहा है, ये डॉक्टर का काम है आपको बताना कि कौन कौन सी चीज आपके शरीर को फिट नहीं बैठती, उसको जाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये इसको बोलते हैं एग्जोटॉक्सिन। तो सबसे पहले आपको शनाख्त करनी है उसके खान पान रहन सहन। एक कल पेशेंट मेरे पास आया और वो उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने कहा भी काम कब करते, कहते भाई काम तो मैं रात को करता हूँ। अरे भाई रात के समय में कुदरत भी अपना चलन बदल देती है। रात के मिडनाइट लोग बोलते हैं कि रात को मिडनाइट दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है कि सारा दिन वनस्पति हमें ऑक्सीजन देती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वनस्पति का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मिडनाइट जैसे घर की सवानियां होती है ना, सारा काम किया करने के बाद कब भांडे बर्तन जितने भी है उनको गर्म पानी से धोकर रख देती है कि सुबह इनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा, हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, नींद पूरी तरह आ गई, हाथ ढीले हो गए, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में एंटर करती है। जैसे कि ऑक्सीजन भारी है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जाती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है वो ऊपर निकलती है। लेकिन उसके पैर क्या होता है कि आप रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, और दूसरी बात उस वक्त एनवायरमेंट में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और जा भी जाती है तो आपका जो फेफड़े है पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरी कैपेसिटी में फैल जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो उसमें पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। कोई भी आदमी अगर 10 से लेकर 2 बजे तक पूरी नींद ले ले, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, पूरी नींद मिडनाइट की 10 से लेकर 2 ले जाए, उसको 8 घंटे या 10 घंटे बेड पर लेटने की जरूरत नहीं है। उसकी ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए वो कैपेसिटी फिल अप हो जाएगी और उसमें जो रेजिडुअल पोर्शन है वो टाइडल एयर, टाइडल वॉल्यूम, ये सब रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब हम गिनती करते रहते हैं लंग्स की, मतलब उनका कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी कि रेगुलर ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा लोड उसका बच जाएगा ऑक्सीजन का, वो फ्रेश फील करेगा। और अगर आप इस समय में जाग रहे हो ना

आज भी सावधा की सुन दे क्या बात है मैं बस दीप दीबारे गीत कौर जी ताड़े नाल

0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ
1: ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
0: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
2: ਓਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ
0: ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
2: ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਰੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਮੁਝੇ ਦੇਖਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਮ ਤੀਨ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਆਜ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋਂ ਮੇ ਮੈਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਉਸਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰੂਮ ਮੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹਮਾਰਾ ਰੰਗ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਯੇ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਔਰ ਇਸੀ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਗ੍ਰੋਥ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਅਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਕਬ ਕਭੀ ਅਲਗ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਕਰੂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਮੇ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾ ਔਰ ਯੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮਨੇ ਚਲਾ ਦਿਆ ਰੇਹੜੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਦੀ ਔਰ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਕੋ ਜੁਗਾੜ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਔਰੇਂਜ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਏਕ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਕਾਮ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੇ तो फिर जितनी भी कमी पेशी हमारी खुराक में रह जाती है ना, वो पूरी की पूरी बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि आयरन कम है तो आंखें पीली हो जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे, लाल नहीं रहेंगे, चेहरा पीला हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम अगर कम है तो किसी और चीज से तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा काम नहीं कर रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम टीथिंग की बात कर रहे तो मैंने ये आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम कहीं से ज्यादा ले लिया जाता है, खुराक में अब उतना आ नहीं रहा, दूध ही देना है बच्चे को, दूध में पूरा कैल्शियम पूरा हो नहीं रहा, तो फिर क्या है, कुदरत आंतरियों से कैल्शियम निकाल देती। अगर वो आंतरियों से कैल्शियम निकाल के दांत बनाना शुरू कर देगी तो फिर आंतरियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे को टट्टियां लग जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। इसी तरह ही अगर उसने कहा कि नहीं आंतरियों में भी इतना है नहीं, तो फिर वो हड्डियों से निकालेगी, जो हड्डियों से निकालेगी कोई दांत तो बनाना ही है, आगे काम तो चलना ही है, जो नई रेलवे लाइन बिछानी हो तो बिछानी ही है, तो अल्टीमेट हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो बच्चा अभी चलने लगा था, जो बच्चा अभी टेबल के साथ स्टैंड खड़ा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो मतलब ये एग्जांपल्स मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है असल में इसका काम क्या है। तो ये सभी चीजें जो शरीर में हमारी खुराक के जरिए नहीं जा रही लेकिन उनकी जरूरत है, और उनकी जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, टू सिंथेसाइज, किसी न किसी और चीज का जुगाड़ बनाकर उन चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ये सब काम जो है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस का, ये बात हम आपने आप सब लोगों को बता दी थी। और बड़ी बात मैंने बताई थी कि डीएनए इसमें होता है डिसऑक्सीराइब न्यूक्लियस होता है जो हमारा करेक्टर को प्रिजर्व करता है, और इसकी भी डिटेल मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जब माँ और बाप के स्पर्म और ओवम मिलते थे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक एक क्रोमोसोम से सैकड़ों ही जीन्स थे, और हरेक जीन्स का अपना ही करेक्टर था, वो अपनी ही खासियत थी उसमें, और जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है वो पूरा बराबर बांटा जाता है ताकि जितने भी सिबलिंग्स हों, बहन भाई हों, उन सब में पूरी तरह उस तरह माँ बाप का करेक्टर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ गुण, कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती नौटी हो जाते हैं, कुछ वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन दूसरे में उतने ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक जीन्स का अपना अपना करेक्टर है। एक एक बच्चे का कद लंबा हो गया, एक बच्चे का कद छोटा रह गया, तो किस बात का ये है कि वो जो जीन्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स के ऊपर जो प्रोटीन की कोडिंग होती, जैसे आप बाजार में सामान लेकर आते हैं ना तो वो चक्री सी बनी होती है लाइनों की, वो उसमें उसको स्कैन करते हैं तो पता हो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, ठीक इसी तरह का पूरा ढांचा जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई, इसके अंदर का जो फ्लूड है, जितनी भी चीजें इसमें तैर रही होती हैं या जितनी भी चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं आगे रिकॉर्ड के लिए या आगे पेश करने के लिए या आगे डिवीजन करने के लिए या ट्रांसमिट आने वाली जनरेशन को देने के लिए, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का भी काम वही जैसे साइटोप्लाज्म का था, एक अलग ही एनवायरमेंट है, एक अलग ही तरह का माहौल है, जेली लाइक ये होता है और इसी में वो सब चीजें तैरती रहती हैं। अगर ये खराब हो गया तो वो पूरी चीज खराब हो जाती है। इसी तरह ही हमने इसका मेन फंक्शन जो आपको बताया था कि एक तरह का स्टोर हाउस है, जितना भी रिकॉर्ड है हमारी पुराने फोर फादर्स का, उस सब को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा होता है, और जैसे ही आगे नई जनरेशन बनती है तो इसकी जो डिवीजन है वो इस तरह होती है कि सभी चीजें दोनों आगे आने वाली जनरेशन को बराबर ट्रांसमिट हो, बराबर डिवीजन उसमें हो। अब जो बराबर डिवीजन होगी तो आगे आने वाला चैप्टर वही आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की जिम्मेवारी फिर किसकी है। इसमें तो समान है, इसने तो कहा कि मेरे पास इतना गहना है, इतना डीएनए है, इतने जीन्स हैं, ये सारे ले लो भाई, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा, इसकी बात आज हम इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। और अगर वो डिफेक्ट हो गया तो बेशक बाप ने तो कह दिया कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, इसको भाई बांट लो, और जो बांटने वाला है वो कहेगा किसी को ज्यादा रेतली जमीन दे दी, किसी को रोही की दे दी थी, किसी को पूरी जो है न्याय की जमीन दे दी, फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो ये बांटने वाले के ऊपर आएगा। अब हमने ये कह दिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रखता है कि इसके पास क्या क्या है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर ऐसी ना हुई तो उसके लिए मैंने बीमारियों की बात भी आपसे कर दी थी। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां न्यूक्लियस की बीमारियों की वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जिसको मैंने अल्जाइमर या पार्किंसन कहा था, या एलएस का एएलएस कहा था, और ये सब बीमारियां जो होती हैं, इनकोऑर्डिनेशन कहा था, ऑटोइम्यून डिजीजेस कहा था, ये सब पैदा होने वाली चीजें हैं। खास तौर पर इनका संबंध पिछली जनरेशन से होता है, और इसी की वजह से ये सब आगे वही न्यूक्लियस डिफेक्ट रहा, वही आगे ट्रांसमिट हुआ, फिर आगे आने वाली जनरेशन को उस तरह की बीमारियां हो सकती। तो ये मैंने शॉर्ट में आप सब लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी मैंने डिटेल में आप सब लोगों को समझाया था कि भाई ये एक तरह के रॉड्स टाइप होते हैं, एक तरह के एनर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक तरह बिजली घर होता है, जो बिजली पहुंचाएगा तो सभी मशीनरी चलेगी, सभी कुछ अंधेरा दूर होगा, काम चलेगा। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमारी सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं है इसलिए मोटर चल नहीं रही। तो वही काम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया था, और इसका काम ज्यादातर इफेक्ट ब्रेन पे होता है अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल ना हो, क्योंकि पूरा संचालन हमारी बॉडी का होता है वो ब्रेन से होता है। ब्रेन से नर्व इश्यू होती हैं, और वो जो रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, और अगर ब्रेन में ही इसकी कोई कमी पेशी रह गई, क्योंकि सेल तो ब्लड में भी है, सेल तो बॉडी के भी है, सेल तो हरेक अंग के ही है, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हर एक सेल की अंदर की कारकर्दगी जो भी करना है उसको नॉर्मल चल सकता है, नहीं तो अंधेरे में तो कोई काम नहीं ना होगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था लिवर के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारी इंटेस्टाइन्स के जितने भी कारोबार चलते हैं, अगर उनमें समझ कर लो कि लाइट ही नहीं है तो सारे के सारे काम जो हो पीछे रह जाएंगे, रुक जाएंगे। और अंदाजा लगाइए कि अगर ब्रेन के कारण काम रुक गए तो बड़ी बात हो जाएगी, डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता ना, बिजली इंटरकरंट आती, कभी आगे चले गई, कहीं आगे चले, इस तरह की कंडीशनें होती हैं, तो उस तरह की कंडीशन में क्या हो, एपिलेप्सी वगैरह की बीमारी आ जाती है। मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, कोई कनेक्शन ढीला होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसी तरह से दिमाग के अंदर, जो सेल के अंदर जितने भी इस तरह के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी उसके डिवीजन होती हैं, उसके हिसाब से ये बिजली सप्लाई करता है, और इसकी बिजली सप्लाई करने से ही दिमाग काम करता है, बिजली सप्लाई करने से ही मसल मांसपेशियां काम करती हैं, और अब मांसपेशियां या किसी अंग नहीं काम, हार्ट ने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, खुराक नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है, चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरनमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया, फेफड़ों के अपने माइटोकॉन्ड्रिया जिसको लाइट करनी थी, वो मोटर चलानी थी कि पानी निकले, उसे काम करना था कि फेफड़े सांस ले पाए, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें इसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी, स्ट्रोक, सीजर के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सीजर केवल एपिलेप्सी के नहीं होते, बहुत तरह के सीजर होते हैं, लेकिन हाँ जितने भी सीजर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या जर्क है बॉडी के एकदम जर्क, कई लोग सोते सोते भी एकदम जर्क मारना शुरू कर देते हैं, या कई बार काम करते करते जाग नींद नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन एकदम बांह झटक जाती है, टांग झटक जाती है, ये सब इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इसकी वजह से होती हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा। इसकी स्ट्रक्चर की बात भी मैंने आप सब लोगों को बता दी थी, और ये भी मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर भी एक लेयर, डबल लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब उस साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट में रहते हुए उससे सेपरेट रहते हैं, क्योंकि इनका अपना किला होता है, इनकी अपनी चार दीवारी होती है, वो डबल लेयर दीवार होती है। जैसे सेल का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले ये रॉड टाइप है, ये रॉड टाइप होते हैं, वो ये भी डबल लेयर्ड होते हैं और ये रोशनी देने का या एनर्जी देने का काम करते हैं, और इस रोशनी से इस एनर्जी से हमारे शरीर का जो पूरा काम है वो उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। और पक्की बात होगी कि इसका काम क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस करना और इसी से सभी चीज को रेगुलेट करना, इसी से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, आवाजाही, लेना देना जितना भी है हमारे शरीर का। अब मान लिया जाए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लोगों को कब्ज हो जाती है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं तो किसी को डायरिया भी लग सकता है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही, चाहे अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये इसी की वजह से है कि करंट नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भाई इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शन का भी पता लग गया। और ये भी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, वैसे ये मैंने कही है, रिपीट कर दूं कि जितना गार्बेज बनता है ना सेल के अंदर, सेल मरते हैं डेली रोजाना, कुछ सेल मरते हैं कुछ सेल नए पैदा होते हैं, क्योंकि रूटीन है बोन्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनमें सेल बन ही रहे हैं, रोजाना बन रहे हैं। और एक सेल की उम्र कितनी है, 120 डेज, 120 दिन के बाद जो आज सेल बना है उसको मर जाना है। और डेली सेल बनते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, हर 6 साल बाद वो जो मेंबर है बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं और दूसरे रिटायर होते रहते हैं। इसी तरह ही ये जो सेल डेथ है ये एक नॉर्मल कर्म है, आदमी को जो बना है उसको मरना ही है। इसी तरह सेल के अंदर भी वो सेल की जो डेथ है वो होनी ही है, और जो उसका गार्बेज बचेगा बाकी सारे, जिसको हम जो तीसरे पाशा की तरह ये कहते हैं क्या करो उसको फुल हर सर पाने, उसमें जो भी आपका राख हो उसको इकट्ठी कर लो और चलते हुए पानी में उसको डाल दो, ठीक उसी तरह ये जो चलते हुए पानी में डालने वाला काम या उसको बर्न आउट करके शरीर से सेल से निकालने वाला काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है। आजकल तो बिजली के चूल्हे से लाश जलाई जाती है, तो ये बिजली का काम जो करने वाला है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी ये करता है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह किसी भी चीज को चालू करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आदमी हैं एक दमी, और दम किससे चलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तब हम चल पाएंगे, हमारे अंदर चर्बी फैट जो भी कुछ प्रिजर्व तो रहता ही है, इसीलिए बिना खुराक के भी हम बहुत सारे काफी दर्शन सिंह पेरुमान 81 डेज जिंदा रह गया था, बुखार खुराक ही रह गया था। इसी तरह ही हम लोग हमारे शरीर की जो भी बंतर है इसमें वो शरीर की बंतर के तत्व तो हैं ही ना, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस है, जब ये शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके बनाने वाले तत्व उसके अंदर हैं। और एक एक अंग से जब आप भूख हड़ताल करते हो या जब आप मरण व्रत रखते हो तो एक एक अंग से वो चीजें ली जाती हैं, और लेने के बाद उनको फिर सिंथेसाइज किया जाता है कि शरीर की एनर्जी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सिंथेसाइज होके जब तक जीवन चलता रहता है बंदा मरता नहीं है। अल्टीमेट जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तब किसी आदमी की डेथ होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि शरीर में मटीरियल तो है, अब नहीं बाहर से खुराक आ रही तो ना सही, लेकिन इसको तो ऑक्सीडेशन किया जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था ऑक्सीजन का कि एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद अगर खुराक दी जा रही है, क्योंकि सभी तो मरण वक्त में नहीं है ना, खुराक दी जा रही है तो खुराक इस तरह की दी जाए जो कम मात्रा में जाने के बाद भी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके। जैसे जो है ना पानी वो हर 2-3 मिनट बाद हजम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है। जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3-4 घंटे में हमारे बॉडी से इसका इवेपोरेट होना या गार्बेज के तौर पर रेक्टम की तौर पर इंटेस्टाइन लार्ज पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का उसमें चले जाना, ये अनिवार्य हो जाता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक, जैसे पत्थर के कोले की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि पत्थर का कोला है वो अगर जलता है तो लाल हो जाता है तो लंबे समय तक वो हीट देता रहता है, और लकड़ी का कोला है तो वो जल्दी बुझ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी हीट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये जो जितनी भी है, ये जितनी भी खुराक होती है ना, उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, और हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस ये जो है, आलू है या सब्जी है या जो भी कुछ खाते हैं, इनकी एक लिमिट है, प्रोटीन की लिमिट इनसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे तक वो हीट उसको रख सकते हैं। तो क्या जब आपको ये लगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रही है या स्ट्रोक हो रहा है या सीजर्स हो रहा है या मानसिक तवाजन सही नहीं है, तो उस बंदे को सबसे पहली बात तो ये करो कि उसको खुराक एनर्जी वाली दो, एक्सरसाइज भी करवाओ, एनर्जी वाली खुराक दो। तो एनर्जी वाली खुराक क्या हुई? प्रोटीन डाइट। उसके बाद जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वैसे ये जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको टी के बारे में भी कहा था, हालांकि टी हमारी नॉर्मल खुराक का हिस्सा नहीं है, एक स्टिमुलेटर है कैफीन के तौर पर। और इस तरह की जितनी भी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज पहले दोस्त के तौर पर हमारे साथ चल रही है लेकिन आप दुश्मनी निभा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि दाना दुश्मन अच्छा जो मूर्ख दोस्त से, क्योंकि मूर्ख दोस्त का कोई पता नहीं कब नुकसान कर दे, और जो दाना दुश्मन है वो उस वक्त वार करेगा जब उसको पता चले कि अब मैं इसका नुकसान कर ही सकता हूं। जब उसको पता हो कि नहीं इसका नुकसान मैं नहीं कर सकता तो वो दुश्मनी नहीं जताएगा, वो दोस्ती जताएगा, ताकि इसका भरम बना रहा है मेरे ऊपर, मेरे पर ये शक ना करे। लेकिन जो दोस्त होता है ना, उसका तो पता ही नहीं चलता, उसके पर तो हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो पता नहीं कब वो नुकसान कर दे। वही बात इस डाइट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग रूटीन में बहुत सी चीजें खाते हैं, कोई बात नहीं, तंदुरुस्त शरीर है, उसको नहीं जरूरत है तो उसको निकाल देगा, टट्टी के रस्ते, पेशाब के रस्ते, सांस के रस्ते, पसीने के रस्ते निकाल देगा। लेकिन अगर वो चीज हमारा शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, तो गर्द के तौर पे शरीर पे रुक जाएगी और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी जहरीला मादा बन जाएगा। इसलिए क्या करें, खुराक डाइट तो आपने मेंटेन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा करें कि भाई जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हैं उनको एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी जितने भी दोस्त है, कोई बात नहीं भाई, 10 दिन भाई इसके पास नजदीक नहीं आना है, दोस्त है, रोजाना चाय पीते ही हैं, नहीं गुजारा होता, लेकिन एक बार उसको अलग करके देखे कि होता क्या है, मुझे इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही चीज मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत, इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही चीज मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है। अगर नहीं जरूरत तो फिर अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना।

आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे? अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है। अगर नहीं जरूरत तो फिर अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना। कोई भी चीज जो जबरदस्ती आपसे काम करवाती, चाय जबरदस्ती हमसे काम करवाती है ना, क्योंकि हम सुस्त होते हैं तो चाय का पी लो थोड़ी चुस्ती आ जाए, तो जबरदस्ती हमें उस उत्तर पर लगाती है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल दे। उसके बाद जितनी भी दवाइयां, जितनी भी एंटीबायोटिक, जितना भी ऐसा कुछ खा रहे हैं, एक बार उसको स्टॉप करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की वजह से क्या क्या चीज हमारे शरीर में बीमारी के तौर पर बढ़ रही है या कम हो रही। ऐसे होता है कि लोग बड़े लंबे समय से, हमारे गांव में हम देखते थे कि लोग बीका सोन के कैप्सूल खाए जा रहे हैं, लगातार ही खाई जा, जरूरत है नहीं, लगातार ही खाई जा रहे, और डॉक्टर के पास उनको तो पता नहीं है कि बी कम्प्लेक्स जितना बॉडी को चाहिए वो उतना रख लेगा, बाकी पेशाब के रस्ते जल्दी खारिज हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, और डॉक्टर को वो कंप्लेन कर रहे कि डॉक्टर जी मेरा पेशाब पी रहा था। अब डॉक्टर क्या समझे इसको पी लिया हो गया? ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी ये है कि जितनी भी खुराक के तौर पे तत्व आप ले रहे हैं, शरीर के अंदर दे रहे हैं, उसको भी एक बार अलग करके देखें, फिर उसके बाद उसकी खुराक निर्धारित करें, और ये देखें कि पहले वाली जो चीज जा रही थी उसके ना जाने से शरीर में कोई कमी पेशी आ रही है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर इस्तेमाल फालतू हम ले रहे थे ना, और जितनी भी चीजें फालतू हम ले रहे हैं वो टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ज्यादा बोझ ना डालें। जितनी रोशनी की जरूरत है यार उतने बल्ब जगाओ। आपका मीटर उतना लोड नहीं ले रहा तो ज्यादा हर जगह जगह रोशनी करने की क्या जरूरत है, जहां काम कर रहे हो वहां रखो, बाकी बंद कर दो। तो ये चीज है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि CQ10 के नाम पे इस तरह की कंपोजिशन मिलती है, या एल कार्सिटाइन वगैरह के नाम पे मिलती है, या एल सिट्रोलाइन के तौर पे मिलती है, ये और हमारी खुराक में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, हदवाना है जिसको वाटरमेलन हम लोग बोलते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें आप रूटीन में दे सकते हैं, या विटामिन जो है उस हालात में। यंग एज में मैंने ये कहा था कि विटामिन पर शरीर को मत डालो, अगर बनी बनाई खरीद खीर दोगे तो जिस अंग को, जिस चीज को सिंथेसाइज करना है वो बंद कर देगा कि बनी बनाई खीर मिल रही मैं क्यों कष्ट करूं भाई। अगर जैसे इंसुलिन वगैरह लेनी शुरू कर देते ना डायबिटिक्स वगैरह लोग, और अल्टीमेट वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। कारण ये होता है डे टू डे एडिक्टेड हो जाना किसी भी इंसुलिन का, पेंक्रियास जितना काम कर सकती थी उतना भी नहीं करेगी, जब बनी बनाई मिल रही तो मैं क्या करूं। इसी तरह बहुत से अंग जो एंजाइम तैयार करते हैं वो एंजाइम तैयार नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे, और अल्टीमेट जब वो दवाई आप छोड़ेंगे तो अल्टीमेट आपको बैड इफेक्ट होंगे। इसीलिए बिना जरूरत के कोई भी चीज लेनी वो टॉक्सिसिटी ही पैदा करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां, जब इस तरह का हालात हो, किसी को भी एपिलेप्सी है, किसी को भी सीजर्स हो रहे हैं, किसी को भी डिमेंशिया की पहली स्टेज, जरूरी नहीं कि सभी एकदम डिमेंशिया पे पहुंच गए, डिमेंशिया तो काफी स्टेज है पागलपन की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, अब आप 70 हो गए, चले जा रहे हो कहीं रस्ते में और आपको याद नहीं, यार पता नहीं कौन सी रोड है, मैं किधर जा रहा हूं, आगे मैं तो घर जा रहा था, ये पता नहीं रोड कौन सी आ गई। रोजाना उस रोड पे आप गुजरते हो, रोजाना जो काम आप करते हो उसमें ही आपको भ्रम हो जाए तो ये समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी लाइट पूरी नहीं दे रही है, तो उसी वक्त आपको फिर ये खुराक बदलनी होगी, उसी वक्त आपको फिर जो दवाइयां खा रहे, खासतौर पर आजकल हालात क्या है कि जो भी इस उम्र के आम लोग हैं ना वो कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं। रेयरली कोई होगा वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कभी दवाई ली नहीं। पुराने जमाने में तो बहुत लोग मिल जाते थे जो बोलते थे कि नहीं मैं तो दवाई लेता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी एस्पिरिन की गोली भी नहीं दी। लेकिन अब इस तरह के आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात होगी, तकरीबन कुछ ना कुछ वो ले ही रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाएं जो ये इंडिकेट करें कि

0: का माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त इन सब चीजों को जो भी आप दवाई के तौर पे खा रहे हो, जो भी आप खुराक के तौर पे खा रहे हो, उसको एक बार सेपरेट अलग कर दें। और खुराक की जरूरत तो है, लेकिन दो क्या, वो जो प्रिपेयर्ड मील है, जैसे मैंने आपको सी कूटन की बात की है, जैसे अर्धवाने की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की है, इस तरह की चीजें जिनकी हमें रोजाना डे टू डे ज्यादा जरूरत है। विटामिन सी और बी के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं ये जल्दी, अब घी फैट है ना, इस तरह के जो है वो जल्दी खारिज नहीं होते शरीर से, लेकिन वाटर सॉल्युबल हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, जल्दी वेस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाए, चाहे बुखार की वजह से चाहे किसी की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ ही, इवन आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट बढ़ रही है बॉडी की, तो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, साल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त विटामिन भी आपके खारिज होते हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो खारिज होता है वो है विटामिन सी और विटामिन बी। इसीलिए डॉक्टर लोग हरेक बुखार में ये रिकमेंड ही करते हैं कि भाई इसको विटामिन सी और बी वगैरह रेगुलरली देना शुरू करो। और देसी चीजों में हमारे पास नींबू है, हमारे पास ये जो ऑरेंज है, इस तरह की चीजें हैं। और वीकनेस के तौर पर मैंने आपको हदवाने के बारे में कहा था कि हम साधारण बात समझते हैं, लेकिन हदवाना जो है, वाटरमेलन जो है, इसमें एल-सिट्रोलाइन नाम का तत्व जो है वो बहुत एनर्जी देने वाला है और बहुत सी चीजें हमारी कवर करता है, थोड़ी क्वांटिटी में भी वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है। तो फिर आपको ये करना है। चलो खैर, ये वो था जो आज से पहले मैंने सभी प्रोग्रामों में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सभी में आपको दोहरा दिया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल गया तो बोल गया, नहीं, जैसे मुझे याद है ना वैसे आप लोगों को भी याद हो जाए कि क्या क्या चीज हुई थी, उसका क्या क्या पर्पज था, और अगर ऐसा पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे क्या करना। उसके बाद और जो ऑर्गेनल्स हैं, और जो अंग हैं हमारे इस सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह की कुछ और अंग हैं और चीजें हैं जो सेल के अंदर अंदर घूम रही हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो सेल के नजदीक, जैसे क्रॉसिंग नहीं होता, या क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं ना क्रॉस, ये जो क्रॉस की तरह के इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, और इनके ऊपर इसकी निशानी क्या है कि जैसे कांच की दो ट्यूबें हों और उनका क्रॉस बना दिया जी, कांच की ट्यूब में इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, इस ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइट है ना, ये इसके ट्रांसपेरेंट जा रही होती है, और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो आसान समझने के लिए मैंने ये कह दिया कि जो क्रिश्चियन लोग हमारे वो क्रॉस पहनते हैं ना, क्रॉस की तरह अगर दो ट्यूबें आपस में जुड़ी हो, उसका क्रॉस बना हुआ हो, तो इस तरह के ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के ऊपर एक और बहुत बड़ी, और हमेशा हमेशा ये एक जोड़े में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेंट्रोसोम यहां हो गया, एक फिर कहीं और हो गया, एक फिर कहीं हो गया, नहीं, जहां जहां भी होंगे ये जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे, ये इसकी पक्की निशानी है। और इसके ऊपर इसकी निशानी क्या है, बाकी इस तरह की और बहुत सी चीजें, जैसे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, इनके ऊपर भी, और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी तरह रॉड के ही होते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या है, सेंट्रोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे आप नाक है ना आपका, मैं बड़ी आसान एग्जाम्पल आपको दूं, आपका नाक है, नाक बैरल है ना, एक ट्यूब है ना, दो ट्यूबें पैरेलल जा रही हैं, और आगे अपनी आंखों का क्रॉस हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक इसी तरह की कंडीशन सेल के अंदर होती है, जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और आप ये देखते हैं कि नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं, ये जो सीलियाज हैं, ये जो सेंट्रोसोम है, इसके ऊपर ये सीलियाज होते हैं, ये इसकी पहचान है। सीलियाज का काम क्या है, जैसे कोई नाव चलती है ना, तो चप्पू चलाते हैं ना, पानी को इधर से उधर से इधर से उधर से मारते हैं, इनका काम है इन सेंट्रोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, ये बेड़ी एक नाव की तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है जैसे जैसे भी होना है वो नॉर्मल काम इसका हो। इसको हम एक तो इसका दूसरा नाम है फ्लाजेला सीलिया, जैसे मछली मछली की पूंछ होती है ना उसको फ्लाजेला बोलते हैं, उसके ऊपर एक झालर सी होती है, ठीक इसी तरह की इसकी आमतौर पर जो कंडीशन होती है इसको हम सीलिया या फ्लाजेला हम बोलते हैं। और ये इन सेंट्रोसोम्स की ट्यूब्स को मूव करने में मदद करते हैं कि यहाँ काम हो गया मिस्त्री जी, अब तुम वहां जाओ, अब वहां काम हो गया। इस तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर घूमते रहते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि जब सेल की डिवीजन होनी हो तो हरेक चीज नॉर्मल, ताकि जितने भी ये सेंट्रोसोम्स हैं उनकी डिवीजन बराबर बराबर हो सके, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं अंदर अंग हैं वो बराबर बराबर, ऐसा ना एक बाप किसी के बच्चे अब बाप की जायदाद को डिवीजन कर रहे हैं तो कि ये एक भैंस तेरी, ये एक भैंस मेरी, ये एक गाय मेरी, एक गाय मेरी, ऐसा ना हो कि गाय किसी एक ही तरफ ही चल जाए, भैंस एक ही तरफ चल जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को जो यकीनी बनाते हैं ये बराबर के बराबर वंड करते हैं, जैसे एक लाइन नहीं खींचता कोई आदमी, और ये लाइट वाले हैं, ट्यूब है, ट्यूब क्रॉसिंग वाली है और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बांट जाते हैं कि भाई ठीक है, जिन्हें यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया, सेंट्रलाइज पोजीशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है। और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादातर की होगा, हमारे पास है ना बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरी तो जी किडनी ही एक है, बड़ी ये बात लगती है ना, जब कुदरत ने शुरू से लेकर दो किडनियां बनाई हैं तो फिर तेरे में एक कैसे होगी। या कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक कान है दूसरा कान बाहर बना ही नहीं है, या एक कान बना है ऊंचा है एक कान नजदीक नीचे है लेवल से नीचे है, इस तरह बहुत सी विकृति, इनको हम बोलते हैं विकृति या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एनोमलीज, इस तरह की बहुत सी एनोमलीज है जो आप आम आदमी सोचता ही नहीं है कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी ही एक है, दो हैं उसे काम चलता था, उसने कुदरत ने एक ही बनाई है, उसको कुदरत ने नहीं बनाई, ये जो सेंट्रोसोम मैं आपको बोल रहा हूं इसने डिवीजन करनी थी, इसने नॉर्मल नहीं की, या एक तरफ का झुकाव हो गया, सभी जो दूध देने वाली गायें भैंसे थी वो एक को दे दी, दूसरे तरफ तो दिया नहीं, जरा भूखा मर रहा है ही कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह की जो कंडीशन है, और या ये काम ऐसा तो नहीं होगा अकेली किडनी में होगा, क्योंकि पूरे सेल के वजूद की बात हो रही है, पूरी बॉडी के वजूद की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ब्रेन भी डिफेक्टिव रह जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का शरीर तो बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है, किसी का आपने देखा होगा कि शरीर छोटा है फिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं, हालांकि जो सिर बड़ा होने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे हाइड्रोसेफलस वगैरह की मैंने बात बताई थी और बहुत सी बीमारियों के बारे में मैंने पीछे प्रोग्राम दिए थे, लेकिन हाँ जब भी इस तरह की किसी अंग में डिवीजन का आप फर्क समझते हो, डिवीजन नॉर्मल नहीं हुई, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि इसका सेंट्रोसोम ने काम पूरा नहीं किया। जितने भी अंदर सेंट्रोसोम थे, जितनी भी यूएनओ की फोर्सेस थी, उसने सीज फायर करवा दिया था, लेकिन उसमें जो सीज फायर गलत हो गया, एक तरफ तो बेचारी ज्यादा डेथ होगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अंगों का छोटा बड़ा होना, या किसी अंग का एब्सेंस हो जाना, होना ही ना, जैसे किडनी की बात मैंने की है, या किसी का टेस्टिस ही एक होना। ये तो टेस्टिस की बात तो मैंने याद आ गई, तो मैं बोल रहा हूं कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सातवें आठवें महीने प्रेगनेंसी के दौरान हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो वो अंदर रह गया। पर लेकिन हमको पता तो चलता है ना कि भाई नहीं, वो आना था, ये इंग्वाइनल कैनाल से नहीं पास हुआ, एक तरफ रुक गया, एक तरफ का बाहर आ गया। ये तो किरार में बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसका टेस्टिस है ही एक, इसका टेस्टिस है ही एक, या किसी लड़की में पैदाइशी तौर पे ओवरी है ही एक, आजकल तो वैसे हालात के तौर पे अगर ओवरी एक निकाल देते तो बच्चे फिर भी पैदा होते हैं, टेस्टिस एक एक होता है तो भी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो काम क्रिया होती है, ठीक है कि जो दो महीने में होनी थी, एक काम ने करना था, सॉरी एक महीने में करना था, वो दो महीने में हो रहा है, फर्क तो इतना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन काम हो रहा है। और ये सब इस तरह की जो डिवीजन होती है ओवरी में, टेस्टिस में, किडनी में, या और जितने भी अंग हैं, अगर वो एक ही अंग है तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल का जब मैं कोई नॉर्मल का लफ्ज बोलता हूं ना, तो उसका मेरा कहने से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी आपस में एक रेशो है कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा, ये इतना होगा तो ये इतना होगा, हमारी उंगली इतनी लंबी होगी तो हमारा फ्लेंजेस इतना होगा, हमारा रिस्ट इतनी होगी तो यहां से लेकर एल्बो तक ये इतना होगा। ये एक मेजरमेंट, अभी तो मेडिकल साइंस में इशारे का हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सारा कुछ कर दिया है कि भाई इतना इतना होगा। लेकिन जब ये चीज, ये रेशो एल्टर कर जाए कि नहीं भाई, एक बांध छोटी है एक बड़ी है, एक ऐसे ही लगता है जैसे अपने शोल्डर के साथ जुड़ी हुई हो, छोटी सी बांध रह जाती है, ऐसे तो मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे हो जाते हैं, इस तरह एक टांग ही छोटी हुई है, एक टांग पूरी बड़ी हुई है, इस तरह की जो डिवीजन है या इस तरह का जो भी कुछ हो जाता है, ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुरानी बीमारियों में कैंसर टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कान छोटा, बांह छोटी, ये सब चीजें आमतौर पर होनी शुरू हो जाती है, ट्यूमर्स वगैरह बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये एक तरफ तो किडनी है, दूसरी तरफ ट्यूमर है, किडनी डेवलप ही नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे कारण, जितने भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कभी यह समा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि पेट के अंदर क्या हो रहा है। अब तो हम एक एक बात जो है पेट की जानते हैं, और उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे पहले पता कर देते कि कैसे। और यही चीजें हम लोग पहले, जरूरत बीमार होने से पहले, जरूरत पड़ने का मतलब बीमार होने से पहले, आजकल हम लोग जान लेते हैं कि इसके शरीर में किस किस चीज की कमी, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात मैंने आपसे कही है, और अगर टेस्टिस हो ही ना, एक पैदा हुआ वो तो टेस्टिस में आ गया, दूसरा बने ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है इस बॉडी में, इस सेल में, वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरी की पूरी डिवीजन नॉर्मल आगे नहीं बना रहा। तो उसके बाद इसी के साथ मिलता जुलता एक सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, है तो वही इसी का हिस्सा, सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, डिवीजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन और ब्रीक डिवीजन करने। आपने कभी लड़कियों को वो चादरें निकालती थी ना, फूल बूटे बनाती थी या दरियां बुनती थी, वो अब देखा होगा आपने, बहुत से सुनने वाले लोगों ने ऐसा पुराने जमाने, अब तो करती नहीं है लड़कियां, अब तो पढ़ाई से उनको फुर्सत ही नहीं होती, पहले जमाने में तो दाज में जो लेकर जाना है उसने जो जितनी चादरें बनाई है, जितने सिरहाने बनाए हैं, उनके फूल बूटे निकाले हैं, यही सब दाज में उसको लेकर जाना होता था, यही सब करता था कि ये लड़की कितनी मेहनती है और आगे जाकर घर को कैसे बनाएगी, इसी से ये सब जाना जाता था। लेकिन एक सेल में ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक तो सेंट्रोसोम की बात मैंने बता दी कि जैसे क्रॉस है इस तरह का, लेकिन बना हुआ पाइपों का, जैसे कच कांच की पाइप होती है, ट्रांसपेरेंट पाइप हैगी है, डबल गुलाई वाली हैगी है, और उसी तरह की इस क्रॉस टाइप का ये सेंट्रोसोम्स होता है, इसके साथ मिलता जुलता और ब्रीक डिवीजन करने के लिए, और ब्रीक डिवीजन करने के लिए आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सिलाई करती हैं ना, मैंने बड़ी बारीकी से चीजों को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बताता था ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मुझे ये चीजें, इसीलिए मेरे स्टूडेंट मेरे से इस बात के लिए खुश थे कि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, ये भूलता नहीं है, हमें पता चल जाता है कि कैसे कर। तब मैं जैसे सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहा हूं तो ये इस तरह के हैं बारीक कि जैसे लड़कियां सुई से वो धागे गिनती है ना, इतने धागे निकाल कर, या स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर की गिनती के इतने कुरे निकालने हैं, इतने कुरे के बाद ये डालना है, इतने कुरे के बाद ये करना है, उसी तरह ही ये जो सेंट्रीओल्स है ना, ये डिवीजन को और एक्यूरेट बनाता है, डिवीजन को और एक्यूरेट बताता है, एक तरह का स्टोर हाउस इसके पास है कि मैं बांटूंगा, मैं चीजें बांटूंगा, भाई डिवीजन हो रही है सेल की, होनी ही है, तो मैं इन चीज को बराबर बांटूंगा, तो इतनी बारीकी से बांटूंगा कि भाई जितने इसके तंग हैं या इसके रेशे हैं ये इतने इधर चले गए, इतने इधर चले गए। वही एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी कि लड़कियां जब सिलाई कढ़ाई करती हैं या दरियां बुनती हैं तो फिर वो रेशों की गिनती करती हैं, वो धागों की गिनती करती हैं, और धागों की गिनती करके फिर उसको वहां से निकालती है ताकि इतने बराबर इधर रह जाए, इतने बराबर इधर रह जाए, तो लगेगा कि जो फूल मेरा बन रहा है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज बनेगा, जहां मैं चाहती हूं वही बनेगा। तो इसलिए सेल के अंदर डिवीजन, जो हर हालत में 120 दिन के बाद सेल को मरना है, नए सेल को आना है, या एक सेल से अगर नए सेल की डिवीजन हो रही है तो उसमें जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बराबर आने चाहिए। और अगर वो बराबर आएंगे, कैसे आएंगे, एक तो पहले हमने सेंट्रोसोम बोल दिया कि भाई हम रास्ते में यूएनओ की फोर्स हैं, हम खड़े हो गए हैं, इधर आपकी फौज है, उधर आपकी फौज है, हम खड़े हैं, अब सीज फायर हो गया है, लेकिन गिनती तो नहीं ना हुई, अभी इंसाफ तो होना बाकी है ना, अभी कैसे होगा ना। तो वो है हमारा सेंट्रीओल्स, वो गिनती है सिलाई की जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि बिल्कुल बारीक रेशे हैं, जैसे कपड़े के रेशे होते हैं ना, ताना पेटा जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह की वो डिवीजन करने वाले ये सेंट्रीओल्स होते हैं, और काम इसका भी वही हो गया। और ये लोग जो हैं, इनके साथ साथ एक और चीज चलती है, वैक्यूल्स उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी खाली खाली स्टोर डब्बे नहीं होते हैं कि ठीक है भाई कोई चीज जो आटे वाला है वो तो आटा रख दिया, जो नमक और दानी है उसमें नमक के और मसाला मिर्च रख दिए, कुछ बर्तन हमने खाली रख लिए हैं कि अगर कोई चीज और बढ़ गई तो उसको कहाँ डालेंगे। इस तरह कुछ एक चीजों को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए, और जितने भी फूड स्टफ्स आ रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पेशली प्रिजर्व करके रखने के लिए कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल करेंगे। आप देखें ना, कई लोग बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हम वैसे तो बोलते हैं फैट रेजिस्टेंट सेल्स डेवलप हो गए हैं और उनमें बहुत मोटे हो रहे हैं, भावे रोटी एक ही खाते हैं, चपाती एक आधी होती है, लेकिन फिर भी वो मोटाई में मोटे हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं रोटियां से 5-7 खाते हैं फिर भी दुबले पतले हैं। तो ये सब वैक्यूल्स जो होते हैं, हमारे खाली पांडे खाली बर्तन होते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा चीज को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। जो भी चीज सेल डिवीजन के हालात में बच गई है कि इसको क्या करें भाई, इसको ठीक है ऐसे है कि इसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी, जब देखेंगे कि भाई डिवीजन करते करते इसको गाय भैंस ज्यादा चलेगी, इसको गाय भैंस कम चलेगी, ये जो स्टोर की आसमान है उसको दे देंगे। तो इसी तरह जितने फैट या और चीजें जो प्रिजर्व बॉडी में हो जाती हैं, जो जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, उन चीजों को कहाँ रखा जाए, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, तो सेल के अंदर जो रहती हैं, वही मैंने फैट का ओबेसिटी का आपको ये दिया कि इसकी जो बॉडी में ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं जो प्रिजर्व करने की जरूरत है, और उसके लिए कुदरत ने वैक्यूल्स छोड़े हुए हैं। इसी तरह ही इसमें एयर बबल्स होते हैं जिसमें हवा स्पेशली रहती ही है कि भाई अगर कहीं सांस लेने की दिक्कत आ गई तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। इसीलिए कई बार नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो कुछ समय के लिए हम गुजारा कर सकते हैं, उसी वक्त ही मरते नहीं ना मरते, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर प्रिजर्व्ड एयर कुछ ना कुछ रहती है, पर उसकी लिमिट कितनी है, 3 से 5 मिनट की, इतना ही होता है। और क्योंकि फिर सेलों का आपस में लिंक टूट जाता है, एक सेल से उधारी लेनी मुश्किल हो जाती है, तो ये सब सारा इस तरह काम चलता है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और अंग है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब भाई ये पूरा कुछ मैंने बता दिया, भाई ये खुराक जाएगी अंदर, ये ऐसे सिंथेसाइज होगी, इससे प्रोटीन बनेगा जी, उसके बाद ये जीन्स क्रिएट होंगे जी, डीएनए क्रिएट होगा, आरएनए क्रिएट होगा, ये प्रिजर्व किया जाएगा, ये करेक्टर प्रिजर्व कर लेंगे, सब कुछ तो मैंने बता दिया। लेकिन जो खुराक आई है यार, हजम कैसे होगी? हम कहें कि हमने रोटियां खा ली, अब मैंने तो आप सब लोगों को बताया है कि कैसे कैसे डाइजेशन का सिस्टम चलता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह में सलाइवा आता है जिसको हम टाइलन बोलते हैं। टाइलन का काम कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम खुराक में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, यही तत्व है ना हमारे, चाहे साग में हो, चाहे घी में हो, चाहे किसी में, असल में जो चीज अंदर जा रही वो वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही सब चीजें जा रही हैं। और इन सब चीजों को हजम करने के लिए अलग अलग पदार्थों की जरूरत है, और वो जो अलग अलग पदार्थ हैं उन सब चीजों को पैदा करना, प्रिजर्व करके रखना एक और अंग, ड्रम है हमारे पास। ये ड्रम की शक्ल के होते हैं, गोल गोल होते हैं और बर्तन है समझ लग कर लें, इनमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, भूख लगी ना, पेट आपर के खा लिया ज्यादा, अच्छा भाई वो हाजमे की गोली ले लो, वो चूर्ण ले लो। तो चूर्ण का मतलब क्या होता है, हम लोग इस लाइसोसोम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर जितना भी एंजाइम्स भरा है वो निकालो, ताकि ये जो चीज मैंने खाई है हजम हो जाए, उसको हजम करने के लिए ये तुम्हारी जरूरत है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह के पैकेट हैं जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और पूरे शरीर में मुंह से लेकर नीचे तक ये पूरे पूरे शरीर में इसी तरह ही हैं, हर एक सेल का एक पार्ट है। कि जैसे मुंह में मैंने आपको बताया ना टाइलन है, तो मुंह में टाइलन जितनी भी है उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाते ही, ब्रेड खाई आपने, आलू खाया आपने, ये जाते ही यहीं से मुंह से ही हजम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लाइसोसोम्स के हैं। नीचे जाएंगे स्टोमक में जाएंगे तो वहां पर एचसीएल पैदा होगा, वहां पर पेप्सिन पैदा होगी, इसी तरह ही आगे जाएंगे तो बाइल आ रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हर एक तरह के खुराक के तत्व को हजम करने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया है कि इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी। वो सब चीज प्रिजर्व कहां है, वो रखेगा कहां, उसके लिए बेचारे पसारी की दुकान में देखो ना, अलग अलग खाने बने होते हैं, किसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। इसी तरह ही कुदरत ने बाकी तो सारा कुछ कर दिया, न्यूक्लियस का भी काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कर दिया, सेंट्रोसोम का भी कर दिया, सेंट्रियोल्स के बारे में बता दिया, वैक्यूल खाली खाने हैं, ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी है, वो सारा कुछ तो हो गया, फैट के ग्लोबुल्स चल रहे हैं वो भी हो गया। लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स भरे हैं, साडा चूर्ण, हमारा ये जो चूर्ण है ना, वो चूर्ण इसी में है कि किसी चीज को हजम करने के लिए कोई चीज पदार्थ चाहिए तेज करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक चीज को खाने के बाद हजम करने का मतलब ये है कि उससे एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से वेस्ट बाहर निकलता है, खून में जाता है, खून अलग अलग सर्कुलेट करता है, उसके मुताबिक उसका वेस्टेज निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लाइसोसोम हमारी आखिरी बात मैं समझता हूं आज के इस लेक्चर की है कि भाई कुदरत ने हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लाइट रोशनी भी है, सामान सारा रखा हुआ है, लाइट रोशनी भी है, उससे चलेगा तो काम होगा, और ये सब चीजें जब जब ना हों बोलते हैं ना, अब मैंने खाना खाया तो यही रुका हुआ, हजम ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या खा, रोटी तो एक ही मैंने खाई थी, कुछ ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, बार हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास लाइसोसोम्स की गिनती कम है, उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें वो चूर्ण नहीं है जिससे जो आपने खाया वो हजम हो जाए। बड़ी आसानी से आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है। इसका काम है खाई हुई खुराक को हजम करना, उस तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोटीन खाए, अंडा खा लिया है ना, तो अंडा आम रूटीन में डाइजेशन इसको हजम नहीं ना करेगी, तो इसके लिए अलग तरह की कुछ और चाहिए ना। तो सेलों के अंदर लाइसोसोम्स में वो चीज भरी होगी जो इस अंडे को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, फैट को अमाइलेज में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अब ये खून में मिलने योग्य है, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, फैट सीधा घी तो हमारे खून में नहीं ना जाएगा, किसी और शक्ल में जाएगा ना, तो उसको उस शक्ल में लाने का मतलब है हाजमा। किसी भी खाई हुई रोटी को सब्जी को हाजम करने की नौबत तक ले जाना, इस तरह उसको कन्वर्ट कर देना कि अब ये खून में शामिल होने लायक है, हो सकती है, मिक्सअप हो जाए, ऐसे नहीं, अलग नहीं होगा, इतना पीस दिया हमने इसको, इतना इसको रगड़ दिया है कि अब इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे हमारा ब्लड है। और ये काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स है, इसको मशीन समझ लो, रगड़ने वाली मशीन समझ लो, या इसमें समझ लो कि किसी चीज को बोलने, असल सूरिक एसिड है तो किसी के ऊपर डाल दो तो वो गल जाएगी। हाँ जी, सो ये सब चीजें आज का प्रोग्राम, हाँ मैं समझता हूँ मेरा टाइम हो गया, और ये सेल को हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम से, कि अब शरीर जवान हो गया है, अब ये बेचारा इस एनवायरमेंट के हवाले से, इस खुराक के हवाले से, अपने तरीका का रहन सहन के हवाले से किस किस हालात का सामना करेगा। बच के तो आ गए हम, बड़ी मुसीबतें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधु, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी, और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है कि और लोग भी सुन लें। इतनी हमदर्दी आप उनसे करें, मेरे से तो नहीं, उनसे हमदर्दी करें ताकि वो भी सुन लें, और उनकी भी जानकारी में वादा हो, हम उनकी भी सेहत अच्छी रह सके, अपनी सेहत का बचाव कर सके। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं श्रोतियों, सुनते रहा करो प्रोग्राम, बहुत इंपोर्टेंट डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुंदा, और अपने साथियों दोस्तों भैन भाई घर के ला के फोन उच्ची आवाज सारा परिवार बह के सुन सकते हो, और ए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मिलते हैं जी फिर, थैंक यू
0: जी, सत श्री अकाल।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल।

0: बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओए कुतिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।